हमकशवरुं उडुथकाय बिंहिद्दुम गय्याय रेद्वा तफात उमगा बुद्धिग अहुल वेरिन्ना कशवरु वेगेंहुरी हेकितके वे।

ए नरक अन्न रुलिंग कुदी कुदी वेदां कैरी वेदे काफिरुंगे फौजे ए नरक एल्लवा कुम्मे फहरको ए तांगे बंडेरिंग एवरेन्ना सुवालु कुरव्वानेते इंजारु कुरव्वा रसूलको त्यबै मीहुंगे गाता वडे नुगन्नवा हिये।